0: सेंटर में है ना,
1: सेंटर में दीदी तब सुशांत दीदी का अगड़ी पर
2: सुशांत दीदी तब ठेक कांची दीदी का अगड़ी ल
0: तिम्रो भिडियो
3: घरको दैलो पुग्छ जाडो बढाउँदै।

करा दूं डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूं, दूर के देखे जो कोई तुझको कान पे उसके चार लगा दूं, जी भर के नाच ले बेबी शैंपेन के शावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो

What is up? What is up? Kya bolne sab log? MMA banta hai, maloom hai na? Machayenge. Jo nahi naachte usko bhi nachayenge. Let's do it. Hey, hey. मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगू रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की बताने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले बल्लू बन जाऊंगा।

मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, आइटम बताने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा।

0: रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद
1: अंडरग्राउंड
0: एमईवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ. वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे.
2: मानेंगे
3: रफ्तार का.

0: மன்னரும் வல்லத்தை நான் தருகிறேன்.
1: Vivian Divine ne bhi bola tha party mein anyway paisa kamaya kya 101 taka tu khud ko bada bole
2: mazaak hai kya
1: label se aane ke baad tera kaam bana lekin mera naam aur bantai se bana kya biggest hai to tere samne hi bahut sare votes ke sath people choice award uthaya kya sign hona bura nahi lekin mere hote hue khud ko bada bolna nahi bolne ka hai to fir asli independent banke dikhane ka sona chadane ka gehna lagane ka har mahina mere jaisa bantai video बनाने का कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का समझ में आया क्या
2: क्या बोलने का बंटा और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है
3: एमसी स्टैन
2: एमसी स्टैन सुन

0: एमसी स्टैंड तू मेरे छाते पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे, समझ में
1: आया क्या? आया क्या एलियन के शक्ल के अला जादू?
0: अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे।

सेवा नहीं करता तो फायदा उठा रही ली पब्लिक। बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, तकलीफ तो होनी है, बंटाई हटेला है। जो भी एरे चाले करता खुले आम पेला है। खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के। सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे, नंगे पैर निकला था लेकिन आज जूते पे। जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का। गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों? क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का। मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं। मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले। समझ में आया क्या?

0: लिया, समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर। मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर। बैटला बोल डाल
1: मानेंगे
0: ये डिस गाना नहीं है, जिस जिसको लग रहा है ये डिस गाना है, ये डिस गाना नहीं है, ये सच्चाई गाना है। सच्चाई बोले ले, वो दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे? है तो बताओ, करके दिखाओ। मालूम है ना,
2: समझ में आया क्या?

0: www.1844-4040 इमेल dhramechap@gmail.com
1: हिंसा मुक्त समाज निर्माणमा हाम्रो साथ एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र रामेछाप अस्पताल।